सामिन, यहाँ हवा एक भूली बिसरी नज़म की हज़ारों साल पुरानी सतरों को सुनाई देती है। माजी के सदियों पुराने जैतून के दरख्तों से एक राग सुनाई देता है। एक थिएटर ड्रामे की सतरें 2000 साल पुराने थिएटर के स्टेज तक पहुँच जाती हैं। ये मालूम नहीं कि यहाँ वक्त की रफ्तार कम हो जाती है या कोई ऐसा महसूस करता है, क्योंकि इंसान इस सुकून में डूबा हुआ है। पत्थर, दरख्त और फितरत जो एक ऐसे वक्त का मातम करते हैं जिसे अब याद नहीं किया जाता, यहाँ एक मुख्तलिफ जज्बे से घिरे हुए हैं। हो सकता है कि यह एफेसोस या एस्पेंदोस के तौर पर मारूफ ना हो, लेकिन वो जगह जो आपको दूसरे औकात में ले जाती है वो थियोस है। आज इस प्रोग्राम में हम कदीम शहर थियोस के बारे में बताएंगे, वो शहर जहाँ तारीख में पहली बार आर्टिस्ट यूनियन की बुनियाद रखी गई थी। थियोस का कदीम शहर आज इजमिर के ज़िला सफरी हिसार में वाक़ है। यह कदीम ज़माने में इओनियन खत्ते के सबसे अहम और कदीम तरीन शहरों में से एक के तौर पर जाना जाता था। इसका जुग्राफियाई महले वक़ूअ थियोस को बड़ा फ़ायदा देता है, और वक्त के साथ साथ यह तिजारती अहमियत का हामिल एक बड़ा शहर बन जाता है, क्योंकि थियोस एक बंदरगाही शहर के तौर पर कायम किया गया था। इसमें एक नहीं बल्कि दो बंदरगाहें हैं। जुनूबी बंदरगाह का घाट कदीम दौर से अनातोलिया के साहिल पर बेहतरीन और महफूज घाटों में से एक समझा जाता है। तहकीक और खुदाई के नतीजे में यह तय पाया कि 50 बहरी जहाज थियोस बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हो सकते थे। इस मुद्दत के लिए तादाद बिल्कुल भी कम नहीं है। बंदरगाही शहर होने की वजह से उसने समुद्री तिजारत में फाल किरदार अदा किया और तेजी से तरक्की की। माहरीन का कहना है कि उनके तिजारती ताल्लुकात कदीम मिस्र से भी कायम थे। थियोस कदीम दौर के नुमाया शहरों में से एक था। ये न सिर्फ अपनी तिजारती कामयाबी से बल्कि सकाफती तौर पर भी तवज्जो मबजूल करता है। अंगूर के इंतजार में देवता दियोनिसोस के लिए अनातोलिया में बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर यहाँ है। दियोनिसोस पौधों की नशोनुमा, जरखेजी और फितरत का देवता है। उसे हर उस चीज़ का खुदा समझा जाता है जो इंसानी जिंदगी की रहनुमाई करती है। यूनानी असातीर के सबसे अहम देवताओं में से एक दियोनिसोस और इस अहम देवता के लिए थियोस में सबसे बड़ा मंदिर तामीर किया गया था। कदीम ज़माने में जिन मौजूआत पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी उनमें से एक मंदिर का फ़न तामीर था। मैमार कामिल मंसूबे को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अंदाज तैयार करते थे। हेलेनास्टिक दौर के मशहूर मैमार अनातोलिया के हारमोजीनस ने दियोनिसोस के मंदिर में पहली बार एक मुख्तलिफ डिज़ाइन का इतलाक किया। तामीराती अनासर को रखने से पहले मशहूर मैमार मंदिर के फर्श को बिसात की तरह चौकों में तकसीम करता है और फिर उन्हें बिल्कुल ठीक रखता है।

तियोस में ये मंदिर खुदा दियोनीसूस के नाम पर बनाया गया था। बहुत अहम और बहुत मुकद्दस है क्योंकि दियोनीसूस शहर का रहनुमा देवता था। वह तियोस अंगूर और फितरत का मुहाफिज था। मंदिर के पुजारी साल के मखसूस अवकात में देवता दियोनीसूस के लिए त्यौहार मनाते थे। पादरी, जो अदाकार भी थे, इन त्यौहारों में हिस्सा लेते थे जो क्लासिकी दौर के यूनानी थिएटर के आलमबरदार होते थे। थोड़ी देर के बाद फ़न की मुख्तलिफ शाखों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार और फ़लसफ़ी तियोस को आबाद होने को तरजीह देते रहे। तियोस एक आर्ट सिटी के तौर पर जाना जाता है और अनातोलिया की फ़नकारों की पहली यूनियन इसी शहर में कायम हुई थी। शायरों, मौसीकारों और थिएटर के अदाकारों पर मुश्तमिल दियोनीसोस आर्टिस्ट यूनियन कदीम दौर के अहम फ़नकारों को इकट्ठा करती थी। तियोस कई सालों से एक आर्ट शहर बना हुआ था और यूनियन अगले सालों में दूसरे शहरों में भी मौजूद रही थी। तियोस के कदीम शहर का सबसे अहम ढांचा दियोनीसोस का मंदिर बदकिस्मती से गुजरने वाले सालों और तबाहकुन जलजलों का मुकाबला नहीं कर सका। कदीम शहर के अहम ढांचे जैसे कि बॉलिट्रियन यानी पार्लियामानी इमारत, थिएटर, एक्रोपोलिस और जिम्नाजियम, ये बताते हैं कि तियोस एक ज़माने में कितना अहम और ताकतवर शहर था। माहिरीन का कहना है कि बड़ी तादाद में आसार कदीमा के खुदाई के ज़रिए दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं और वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जब खुदाई मुकम्मल हो जाएगी तो ये बात सामने आएगी कि तियोस एक ऐसा शहर था जितना एफेसोस या अस्पेंदोस है। सामिन, कुछ मुहक्किकीन अनातोलिया को सकाफ़तों का बुनियादी खित्ता करार देते हैं। यह कदीम ज़खीरा और दौलत एक तहजीब से दूसरी तहजीब में मुंतकिल होने से तरक्की करती है। बानिय जदीद तुर्की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क फ़न और फ़नकारों की अहमियत पर इन अल्फाज के साथ ज़ोर देते हैं कि एक कौम फ़न के बग़ैर होने का मतलब यह है कि उसकी ज़िंदगी की एक रग मुनक़ता हो गई है। आज इस प्रोग्राम में हमने अनातोलिया में कायम होने वाली पहली फ़नकारों की यूनियन के बारे में बात की। हमने अनातोलिया में डियोनीसोस के सबसे बड़े मंदिर के बारे में बात की जो हेलेनिस्टिक दौर के सबसे कीमती नमूनों में से एक है और कदीम शहर ट्योस जिसने इसकी मेज़बानी की थी। नस्ली खान देरमैन जी ओलो के कलम से तहरीर करदा ये प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: नहीं होता था। लेकिन 17वीं और 18वीं सदियों में बढ़ती हुई आबादी, गैर मंसूबा बंद शहरकारी और बिगड़ती हुई फिजाई आलूदगी जैसे मसाइल ने कीमियाई तरक्की पजीर साइंस के लिए एक नया तहकीकी मैदान पैदा किया। उस जमाने के मशहूर कीमियादान अब एक ही मकसद की तलाश में थे कि हवा दरअसल क्या है, जिसे कदीम यूनानी तहजीब से लेकर अब तक पानी, आग और ज़मीन के साथ ज़िंदगी के चार बुनियादी अनासर में से एक समझा जाता है, और इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। पहले मुतालिया काफ़ी शौकिया और नाकाफ़ी हुआ करते थे। हवा के बारे में अपने मुताले में कीमियादान जॉन बैप्टिस्ट वॉन हेलमंट और रॉबर्ट बॉयल ने इंकशाफ किया कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो मुख्तलिफ गैसों पर मुश्तमिल हो सकती है, और ये हवा जलाने के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन वो गैस के मुरक्कब के बारे में ठोस मालूमात फराहम नहीं कर सके। इस रास्ते पर पहला कदम स्कॉटलैंड के कीमियादान जोसेफ ब्लेक ने उठाया। उन्होंने 1756 में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाया, लेकिन यह जल्द ही वाजह हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली है और सांस लेने के लिए एक और गैस की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की दरियाफ्त ने फितरत से मुतालिक तमाम साइंसी उलूम और हमारे ज़िंदगियों में बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं। ऑक्सीजन को दो कीमियादानों ने आज़ादाना तौर पर दरियाफ्त किया था। इंग्लिस्तान में पादरी और कीमियादान जोसेफ प्रेसली और स्वीडन में विलहेम शेल पहले लोग थे जिन्होंने ऑक्सीजन की दरियाफ्त की। लेकिन चूंकि विलहेम शेल ने अपनी दरियाफ्त पर अपना साइंसी काम 2 साल तखीर से शाया किया, इसलिए ऑक्सीजन की दरियाफ्त के हवाले से जो पहला नाम जहन में आया वो हमेशा जोसेफ प्रेसली का था। अपने तजुर्बात में जब प्रेसली पहली बार एक ऐनक की मदद से सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए मरकरी ऑक्साइड को गर्म करके गैस का मरकब हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इतफाक़ से देखा कि टेस्ट ट्यूब से गैस का अखराज उनकी मेज़ पर मौजूद मोमबत्ती की तरफ हो गया और मोमबत्ती अचानक रोशन हो गई। प्रेसली ने इसी तजुर्बे को दोहराया और उन्होंने जो नई गैस हासिल की थी उसे एक कंटेनर में जमा किया और फिर उसे 2 चूहों पर मुश्तमिल डब्बे में मुंतकिल किया जो दम घुटने से मरने वाले थे। इस गैस के जेर असर चूहों में अचानक जान पड़ते देखकर प्रेसली ने एक कदम आगे बढ़कर इस बार अपनी नई दरियाफ्त को अपने ऊपर आजमाया। वो इस मंजर को बयान करते हैं कि मैंने अपने सीने में एक ख़ास हल्कापन और राहत महसूस की। मैं एक खुशगवार एहसास से भरपूर था। जोसेफ प्रेसली वो साइंसदान थे जिन्होंने चाहे खालिस ऑक्सीजन इत्तफाकन ही दरियाफ्त क्यों न की हो। सामिन, उसी दौर में मुख्तलिफ गैसों खुसूसन ऑक्सीजन की दरियाफ्त साइंसदानों के लिए इस दुनिया के असरार को सुलझाने की कोशिश करने वालों के लिए एक बेहतरीन रहनुमा थी, लेकिन किसी भी नई दरियाफ्त ने वो खुशी साबित नहीं की जिसकी वजाहत सुलेमान आजम ने करने की कोशिश की थी। वो अकबाल जो उन्होंने सदियों पहले लिखे थे, यानी एक सांस लेना और छोड़ना, इसकी खुशी का बदल नहीं हो सकता। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: अहम इजादात।